0: को नुकसान पहुंचा रहा है। हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाना चाहिए जो जजीरे के दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद को मजीद कमजोर करने का बायस बने। मादरे वतन और सामन मुल्क तुर्की कब्रसी तुर्क अवाम के जायज हकूक और मफादात का दिफा करेगा और हर हाल में इनकी सलामती को यकीनी बनाएगा। तुर्की शुमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया को आलमी बरदरी में इसका जायज मुकाम दिलाने के लिए अपनी कोशिशें असमो इस्तकलाल के साथ जारी रखेगा। वाज रहे कि अमरीका ने जनूबी कब्रसी यूनानी इंतजामिया को हथियारों की पाबंदी से मुआफ रखने के फैसले में मजीद एक साल की तोसी कर दी है और यह तोसी 30 सितम्बर 2027 तक मुअसर रहेगी। हौसी बागियों ने सऊदी अरब में एक फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का ऐलान किया है। इत्तला के मुताबिक यमन के हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने जनूबी सऊदी अरब में एक फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। हौसी फौज के तर्जुमान याहया सीरी ने कहा है कि हमले में शरूर अफवाजी मरकज में हथियारों के डिपो और कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को निशाना बनाया गया है। सेरी ने कहा है कि ऑपरेशन में मुतद्दद मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। ये कार्रवाई यमन के खिलाफ सऊदी अरब के जारी फजाई हमलों का बदला है। सेरी ने मुतनब्बे किया है कि अगर फजाई हमले जारी रहे तो हमलों को सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों तक फैला दिया जाएगा। तुर्की ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की सख्त मुसम्मत की है। तुर्की वजारत खारजा ने मस्कुरा हमलों के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि हम इराक की सरजमीन से किए गए और सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बयान में सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हमायत का इआदा किया गया और खत्ते में कशीदगी में इजाफे से बचने की खातर सऊदी हुकाम के इख्तियार करदा मुहतात और तहमुल पर मबनी रवैये को सराहा गया है। वजारत खारजा ने इराकी हुकूमत की जानब से मस्कूरा हमलों की मुसम्मत किए जाने और वाकये की हकीकत को सामने लाने और जिम्मेदारों को का तयन करने की खातर फौरी तौर पर तहकीकात शुरू करवाने का ऐलान किए जाने का भी खैर मकदम किया और कहा है कि हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती को ख़तरे में डालने वाले हमलों को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया है। जारी करदा ऐलान में कहा है कि इराक से आने वाले ड्रोन हमलों में मशरकी मगरबी ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि इन हमलों में कुछ अफराद जख्मी हुए हैं और माली नुकसान भी हुआ है। रियाज हुकूमत ने ऐलान किया है कि इराकी वजीर आजम अली अल सैदी की दरख्वास्त पर इस मरहले पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। ताहम सऊदी अरब ने यह भी वाजे किया है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़ के लिए ज़रूरी इकदाम करने का हक महफूज रखता है।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: इराक ने सऊदी अरब तेल पाइपलाइन पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन प्लेटफार्म पर कब्जा कर लिया है। इराकी हुकाम ने इराकी सरजमीन पर सऊदी अरब में तेल की पाइपलाइन पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन लॉन्च प्लेटफार्म को कब्जे में लेने का ऐलान किया है। इराकी सिक्योरिटी मीडिया सेल के सरबराह साद मान ने इराकी सरहदों के अंदर प्लेटफार्म पर कब्जे की तस्दीक की है और कहा है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी यूनिटों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स ने प्लेटफार्म पर कब्जा कर लिया है। मामले की तहकीकात जारी है। फ्रांसिक माहरीन प्लेटफार्म से मुतलिक शवाहद और तकनीकी दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हुकाम हमले में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए फील्ड और इंटेलिजेंस का काम भी जारी रखे हुए हैं। फ़िलिस्तीन ने ब्रिक्स के फ़िलिस्तीनियों के हकूक के हिमायत पर मबनी बयान का खैर मकदम किया है। फ़िलिस्तीन ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के फ़िलिस्तीनियों के हकूक दो रियासती हल और अक़वाम मुत्तहदा में फ़िलिस्तीनियों की मुकम्मल रुकनियत की हमायत के हामिल एलामिया का खैर मकदम किया है। फ़िलिस्तीन वजारत खारजा ने जारी करदा बयान में फ़िलिस्तीनियों के हकूक और फ़िलिस्तीन मकसद की हमायत के ऐलान को सराहा और कहा है कि मकबूजा मशरक़ी यरूशलम में समेत फ़िलिस्तीनियों को इनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती बेघर करने की कोशिशों को मुस्तरद किया जाना काबिल तारीफ है। इलामिया में इसराइली कब्जे के खात्मे का मुतालबा किया गया और दो रियासती हल की हिमायत की गई है। अलावासी रियासत फ़िलिस्तीन के अक़वाम मुत्तहदा में मुकम्मल रुकनियत की भी हिमायत की गई है। फ़िलिस्तीन इंतजामिया ने मशरक़ वस्ता में फ़िलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहदा की इमदादी एजेंसी उनरवा और इसके मैंडेट के लिए ब्रिक्स की हिमायत का भी खैर मकदम किया है। इलामिया में ब्रिक्स ममालिक ने मकबूजा मशरक़ अल-क़ुद्स में मुकदस मकाम के तहफ़ और इन मकाम तक रसाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। इसराइल ने जनूबी लुबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। लुबनान के

सितारे के गिर चांदी के 15 कंदील लटके हुए हैं जो कभी नहीं बुझते। ये कंदील उस गिरजाघर की हिफाजत के जिम्मेदार कदीम फिरकों के दरमियान तकसीम हैं। 6 कंदील रोमन ऑर्थोडॉक्स, 5 कंदील आर्मीनियाई ऑपस्टॉलिक और 4 कंदील कैथोलिक लातीनी बरादरी के हैं। सितारे के 14 कोने होना महज कोई इत्तेफाक नहीं है। मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन इस तादाद को बाइबल के 2 बुनियादी अहवाल से जोड़ते हैं। सब भुले मती की इंजील के आगाज में दी गई शजरा नसब की तरतीब सामने आती है। इस मतन के मुताबिक हजरत इब्राहिम से लेकर राजा दाऊद तक 14 नस्लें, दाऊद से लेकर बाबिल की जिलावतनी तक 14 नस्लें और जिलावतनी से लेकर हजरत ईसा तक 14 नस्लें गुजरी हैं। ये अदद एक सिलसिले की तकमील की अलामत है। 14 के अदद के बारे में बाद की अलामती तशरीहात में से एक इसे यरूशलम में मौजूद विया डोलोरोसा के 14 मकामात यानी स्टेशंस ऑफ द क्रॉस से जोड़ती है। इस तरह यह सितारा बैतुल्लहम की विलादत और यरूशलम के दुखों के रास्ते को इसी एक अदद के जरिए अलामती तौर पर आपस में मिला देता है। ईमानी रिवायत में बैतुल्लहम का सितारा या मशरक़ी सितारा के नाम से मशहूर ये रोशनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मशरक़ से आने वाले दाना लोगों की रहनुमाई की थी, माहरीन फलकियात की तवज्जो का मरकज भी बनी रही। साइंसदान इस बयानिए के पीछे उस दौर में आसमां पर रोनुमा होने वाले किसी दुमदार सितारे के गुजरने, मुश्तरी और जुहल के सैयारों के मिलाप या किसी रोशन सुपरनोवा धमाके जैसे मुमकिन कुदरती वाकयात का जायजा लेते हैं। लेकिन इस चांदी के सितारे की कहानी सिर्फ अकीदे और फलकियात तक महदूद नहीं रही, बल्कि 19वीं सदी में यह बैन अल-अक़वामी सफारतकारी के मरकज में आ गई। 1847 में गार में मौजूद यह चांदी का सितारा अपनी जगह से हटा दिया गया और गुम हो गया। इस वाकई ने ईसाई फिरकों के दरमियान इख्तलाफात को मजीद हवा दी। मुकदस मकामात के कंट्रोल और सरपरस्ती को अपने हाथ में लेने के ख्वाहिशमंद फ्रांस और रूस ने सल्तनत उस्मानिया पर शदीद सफारती दबाव डाला। सितारे के लापता होने से बढ़ने वाले इस तनाज़े ने फ्रांस और रूस के दरमियान मुसाबकत और उस्मानियों पर दबाव को मज़ीद बढ़ा दिया। यह तनाज़ियात 1853 में शुरू होने वाली जंग क्रीमिया की तरफ ले जाने वाले अमल में एक अहम सबब बने। उस्मानी इंतज़ामिया ने इस बहरान को हल करने और ख़त्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 1853 में एक नया चांदी का सितारा तैयार करवाया। सुल्तान अब्दुल मजीद की हिदायत पर ले जाकर गार में उसकी जगह नस्ब किया गया। यह सितारा वही है जो आज भी गारे विलादत में महफूज है। यह सूरतहाल जाहिर करती है कि एक अलामत सिर्फ एक मजहबी निशान नहीं होती, बल्कि उसका बराह रास्त ताल्लुक सफारतकारी, सियासत और सरजमीन फिलिस्तीन पर तारीखी ताकत के तवाजुन से भी होता है। आज जब आप बैतुल्लहम जाते हैं तो आप देखते हैं कि रोमन ऑर्थोडॉक्स, आर्मेनियाई और कैथोलिक रवायात के साथ साथ इस मिट्टी के मकामी फिलिस्तीनी ईसाई भी इस कदीम विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। मुख्तलिफ जबानों में पढ़ी जाने वाली दुआएं और इबादतें इसी गार के पत्थरों में गूंजती रहती हैं। बैतुल्लहम के इस सितारे के गिर्द सदियों का अकीदा, सफारतकारी, उस्मानी विरसा, यूनेस्को का तहफ़ और फिलिस्तीन की गहरी याददाश्त सब एक साथ मौजूद हैं। अगली किस्त में हम बैतुल्लहम के जेर ज़मीन चांदी के सितारे से निकलकर यरूशलम के आसमां की तरफ बुलंद होने वाले सुनहरे गुंबद की तरफ चलेंगे। हम कुब्बतुल सखरा की तर्ज तामीर, उसके तनासुब और उसकी सौती खसूसियात पर बात करेंगे। अगली किस्त के लिए खुदा हाफिज। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।